कोई न चत्तु न थीरुई नंबु तोलव न नाइना फंगब कौब लेतरे ताकपियु कई दनो जगत की मपू।

धर्म सनक तो ना तहान जरीबा से आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल लगेनी हाउसिक पुंफा मसीदा ताबीर से सीधा हिदाक्ता चनम की कानबा खंगमीना से

मथंग द खुदोल तमजरी वांगु आर्टिस्ट एसोसिएशन की सेसक पसिंग न सकपा लोंगजम तोंबी सिंग न साइडिंग बई सई पोक नफम लमदम इमा भारत की कथोक लसे अखोई अचुंबद पुनिंग

0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅꯣꯂꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯄꯟꯅꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯔꯊ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯖꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯔꯅ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯂꯦꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯨꯁꯥ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯄꯟꯅꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯔꯊ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯖꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯔꯅ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯂꯦꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯖꯩ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏꯄ꯭ꯔꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯀꯣꯟ ꯃꯅꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯀꯥꯡꯖꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯌꯨ ꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯇꯤꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯝꯍꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯌꯨ ꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯃꯣꯜ ꯅꯣꯡꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯑꯥꯏ ꯄꯥꯠꯅꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯔꯦꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏ ꯄꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯑꯥꯏ ꯄꯥꯠꯅꯥꯒꯤ ꯏꯁꯄꯦꯁꯦꯜ ꯖꯨꯗꯤꯁꯦꯜ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯅꯣꯟ ꯕꯦꯂꯦꯕꯜ ꯋꯥꯔꯦꯟ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯌꯪ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯀꯦꯝꯞ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯇꯥꯎꯟ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁ ꯆꯔꯁꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯑꯪꯁꯤꯝ ꯗꯪꯁꯥꯋꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯅꯇꯟꯇ꯭ꯔ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯍꯣꯝ ꯒꯥꯔꯗꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯑꯥꯔ ꯇꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯝ ꯒꯥꯔꯗ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯝꯁꯥ ꯀꯩꯁꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯅꯤꯠ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ
1: और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए गुनहगारों को पकड़ा गया है वे जेल में पड़े हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया
0: ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯁꯣꯅꯝ ꯋꯥꯡꯆꯨꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯆꯔꯥꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯑꯣꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯨꯁꯥ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯎꯔꯤꯁꯥꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦ ꯄꯤ ꯖꯦ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯂꯥꯝ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯁꯥ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯌꯥꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯀꯌꯥ ꯑꯊꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯅꯤꯀꯨꯁꯣ ꯗꯥꯟꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯥꯅꯆꯦꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯤꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯈꯟꯅꯈꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥꯗ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕꯅꯤ केंद्र की सेल्टू मंत्री निर्मला सीतारमण नंगसी न्यू दिल्ली की विज्ञान भवन पंथोकदबा चाम हुंपुतरे चुबा इनकम टैक्स नुमी थौरम द छरुक यागनी भारत इनकम टैक्स सनबहौ की बजही चाम हुंपुतरे मपुंग फारक पगी थौरम असिदा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स समसुंग सेल्टू मंत्रालय की मकोक थोंबा ऑफिसियल कया छरुक यागनी सिक्किम की नामची जिला की समरडुंग द एनएसपीसी तीस्ता स्टेट सिक्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तनेल लिंखाई बगदगी थरुक पयादन लेरकिब म्योय कुनमंगा मक कनबंगमख्रे निमित मरी नि चुमने सथरकिब मी कनबगी थबक अदु ngrang loisinki थौदो अदुग मरी लेनना सिक्किम सरकार न म्योय मरी न साबा इंक्वायरी कमिटी अम छेमदुना लाइबक थिब थौदो अदु करम न थोकिबनु हाइबदु थिजिनब खंगनख्रे लोइनना निमित तरा मंगानि की मनुंग द कमिटी की रिपोर्ट सरकार द पिखलकन बसो हाइदि अमरुमद असम द इसिंग इचाउना सिकी बमियोई निफुमाथोई सुख्रे मियोई लागतरुक मखाइमरो इसिंग इचाउकी अवाब मायुक नदी इसिंग इचाउना सोखले बमियोई सिंगबु सापगते बमफम सिंगद थंगदोपगी थबक हौजिकचु मखासथदी मे डिपार्टमेंट ने लागदिबा नुमिथुमनी मरीनी असिदा राइजा असिदा कनब नोंचुखिकनि हाइदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुकनिंग की हुआ मन की बात की सामकुंठा तरुक सुबह एपिसोड लाखिब नुमाइजिंग नुमित की अयु पुंग तरह माथोद आकाशवाणी की थोंग संदोकनी थरुमसी ए आई आर न्यूज डी डी न्यूज पी एम ओ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीमिंग तौतना संदोकनी थरुमसी एल आर एस रुराजानपुर संदोकनी की मणिपुरी वाहनथो प्रधानमंत्री ने वा ngang बहेक लोबग आकाशवाणी इम्फाल संदोकनी नुमिदांग पुंग निपान अमुक हन संदोकनी डायलेक्ट लोन चिंगदना मथंग की नुमित संदोकनी ngasi phungwa pauje singi maru iba pau singi dama hauje mangsa tabam premananda leire premananda
2: thaga chari nolini manipur electricity regulatory commission gi ahan ba kumon thoram pangtho khibaga loinana rajyapal na phungdo khiwa waform jantar mantra ra cjp na chang siliba khongjang opposition gi thawin silni haiba grihamantri govindas kontho jongi waform amasung ravina amadi sanjit laikhidabagi ningsing thoram pangtho khibagi pauna ngasi phungwa pauje singi maru iba pau oire मणिपुर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की अहम कुमन थोरम पांथोखिब चाखद इलेक्ट्रिसिटी फंगन ताय राज्यपाल की वफम मुख्यमंत्री लैंगा कमीशन पाबी पागनी फोदे वफम सगा एक्सप्रेस मणिपुरी अहम हेडलाइन तौरी पाव से सनाब सगा एक्सप्रेस इंग्लिश पीपल्स क्रॉनिकल पौनफम मरब पाव तोान तोान हेडलाइन तौदान फोले एन एस सी एन ईस्टर्न फ्लैंक सेंख्रे आर्म रेजिस्टेंस मखा चौरी है सगा एक्सप्रेस मणिपुरी अनीसुब हेडलाइन तौरी जंतर मंतर सीजेपी ने चंसली खोजों की मतलब राज्य की गृहमंत्री गोविंदास कौथौजम फोदे वफम सगा एक्सप्रेस इंग्लिश अहम हेडलाइन तौरी जंतर मंतर मणिपुर कलू लाब ना सिंह लाने लमजिंगनी है गोविंदास की वफम सना लेक अनीसुब हेडलाइन तौरी पाव से अत पावचे अहम लमाइट मरब पाव फोनरी पावसी हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस अनीसुब हेडलाइन तौरी मणिपुर मेलदना नेट परीक्षा की वहां चेल लीक होबग मरी लेना चंसीब खोजों असद मपान की खुद याव की ममी तारी है गृहमंत्री की वफम अहम हेडलाइन तौरी संजित रविना लेखिदब की कुमोन पांथोखे सेक्यूरीटी फोर्स की मकुद चलब कया अफस्पा की मरम हादखे है सना लेक एंकर कलम फोले पावसी अहम पावचे मरब पाव फोनरी पीपल्स क्रॉनिकल ड्रग ललोब की मधक्त एन सी बी अकन थबक लौखली है अहम हेडलाइन तौरी हुएन लानपाव मोबाइल फोन की खुथांग खद्रक तौरगा लुपा लिसिंग हुंपुंपु लौबगी स्काम इम्फाल यौरगले साइबर क्राइम पी एस वाकत्खरे पावना अहम हेडलाइन ओरी एन सी बी क्रैकडाउन चथवद म्यांमार की ड्रग ललोब उमंग तुरेल चलहले है पौनफम अनीसुब हेडलाइन तौरी कानफ्यू मेल फ्यूचर यंग लीडर बूथ कैंपेन ngrang तमेंलोंद हौदौब की पावना अहम हेडलाइन तौरी तमेंलोंग टाइम्स एन एस सी एन आई एम एन एस सी एन जी पी आर एन ईस्टर्न फ्लैंक तोान तोान लुप खाइदोखरे पावना अहम हेडलाइन ओरी नोलिनी
0: थगजरी प्रेमानंद अरुबद मरुब पाव नुमित मापनी चथरप रथ जत्रा कांग चिंबगी थौरों ngasi पुन जत्रा कांगलेन पांथोक्तुना लोइसिलगनी प्रधानमंत्री ने हाई नहा सिंह तुंगी पुंसी मांगनब खोनब कईदौनदू लेमन थारोई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेमाइदगी नोंथक्त सान काप याब मिसाइल कुसा माइपाक चांगी तोखरी पाउ लुजरी

इसे ऐसे तान जखी बगल ना मणिपुर फिल्म में सही लान थोक तुन चाहन जब लुशिंजरी आकाशवाणी इम्फाल हौजी पुंफम मसीदा ताबीरसी नाहरोल के खोंजा

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मधंग खुदोल तमजरी अरमान मालिक तेगी गीत।

0: पंथवा पोप्पा नमोम लाइबक थीबी दी पंथोगी माई गई है नमोम वा अनक खांग लिए नमोम दी नरांग इनुंग देगी तरासिंदम देरिए पंथो
1: हीस यवा मिकप नबसु मसाई ने करी की तरासिंदम बा हा करी की तरासिंदम बा हाय चिंता सिलमा मत सु थोक बांग निंग दबी तरा सा पु थोंग ले मका हल नंग बु पो पी पलेम न मा असी बि दुना असम न बु सिंता लमरन हे
0: बले
1: थक्षी खासी नाय दबी मांग सोक थमे नाय न वरक वाते लक दबी सिगा
0: बले मि मा तो
1: आ इमो मि बे म ना हे थोय सिंग थोय बसी दी माय थोंग खे गुमला आवा पोलम पु बद द मंगाय रे ने गुंजनिंग ग्रे चिंग लोग न सको
2: बले मि मा पुपी इसेम हल्द अदुन सैबीगनो इसेम हल्ग तरा चिंदा मिन जगेने इसेम हल से तरा लाम रिनी अपोपी
1: हे परी नवा पिख अंगांग न टिक न त पलेम न मा वेबी इथक त हंग न या वा पाउ त पदी न सेम छक पी बे म नुंसी द न नुंसी साबी सिन इन छिलि ब न तर हे कना की सेम हल हा कना की सेम हल नो हे परी करी मी एन खंखई दुन लेडी लव मोंग बिरा नंग द खोंदो यो खोंदो यो
0: इदुन लियम
1: नामा आइगी यावा तु हिंग द बनि पारी पारी न दम बिरा नंग द तना सिंदम लो ला तना सिंदम लो लाउ ने लाउ ने पारी न
0: जिमा इजे पारी इसे हम गे दुन निंग थो
1: हाय हाय लम के पिता ब्रा खोंदो निंग ब म फम द खोंदो खो ले निंग ब म फम द ले जेरो म सि कोरो नंग द की इरा नंग द लेब यार रोय अ थोंग गि ना तई थिंग लगे खंग ब्रा
0: बलेम पहले मपोपी करी मताओ को बगे नमो मुक करी ओर सिगे पहले थोंगी ना तई कांग बियो चारगी पोरोन सत बियो पहले मी मातोन अपंग भी नमो नी नमो मुलत नबी गनु थोंगी ना तई कांग बियो गबा पहले तरे सेंजातान की बा पंथाओ माना हलाई रखती भावा नमोम इरा नुंग द लई जगे पले हे नो मदोन थक त थोक लीबा था थवान मि साक्षी न खोई सु लाइब टीवी साउबी एगी इतौ से निंगाई द न येंग लीबो लाइबक टीवी सौबी आएगी अवाब से पलेम पंथौ द यहुआ पौदम भी उगबा
2: इचिमहल इचिमहल
0: इतो नि तो इसियम गी बुंगो इतो नि तो तंग लो लेन न थेंग ल बवांग लेन द करी गी दु नि थौ न मपालांग द थोलक पनो इसियम गी बुंगो
2: इचिमहल पले मिमा कोमले तु कुंतान करे नोपाना तरा चापु थोक चरली
0: ลามนรินีตราจินดำมิโรเจมาอิเซมกีบงโออิดุนิงทองนุงสีบาอิเซมตราลามดีเอเจมาตราจินดำโลอิเซมตราจินดำโลเยอิดุนิงทองอิเซมตราลามดีเอปะเลมอิมาตาครบดีเซบีเซเทียงปีระรณีอิดุนิงทองอิรานุงดะซัง खोमलेन तुंखुल तालुरो गबा चिमहल सेंगी दुनिंग थौ

0: हायू ने न सेम कई तो खोंगशान खरबगी ने है
1: बंताओ बंताओ पोपा लाइवक टीवी चेम दी बलेम चाहिए ठेंग कांगम दा अवा मैं चाक को न ब चेगला लांग मैं योन तूफान कम न पाई के बंताओ पोपा
0: ओय मोहम नुम्सी पंचाव न पाई मुवाला उबरन है मो
1: हंदकी लांगो न सीधी पंथाव की लमन सिंह अम्द्रे मथंग लांगो न पंथाव की लमन सिंह लगे पाऊ में लमी ने न पारी था
0: पारी मो इमो भी बे मां नुम्सी भी पंथाव न पाई दे मांजे रे दना मांजे रे दना लांगे लाइव टीवी मोना करिए पंथो ए मुंगा रंदे ओ माने माने रानी जाय हलवाई रख पता यंग दो लम खांग थेन रखी बा चकला लांग में इदो इमो माने
1: तो बोकवा
0: नोंग दो थक पाईरी बा चकला संगो रखते की चकला मना आई उरगा पंथरक चकला ने मेरे उपिरानी हो ना कोई न कोई न इनाक पा आई वो काम गोम आई ये माइके सिंग नहीं है यो हम पाओ फोंग दो नहीं समुनाक तो कोई न कोई न पाई के भी चकला दो इमोम लांग लेन चाउबी ने
1: पंदाओ पोपा
0: नमातुंगे चाइबी चाइतें खांग मंगंदुला इमों ने चकला लंग में वो न वोल बोले न कोई वालू से भी या या अरे अरे अरे मामा हुई भी करेगी मोंग भी रानुंग तो तातो यूने लोली मापालांग थोलो है
2: ताजरे ताजरे
0: मापाई बुगा पारी चावन पाव दम नहीं यावासी अचुम भैया वाला हाँ अचुम भैया वाला करी तें कारी चिंगोयो न है इमोम चावी लमलेन के तो कुंचान की बनो न मापाई न तेरे किसे इंताल में सकती मैं इमोम दो न फंदी मनत्र न है मामा
2: मापाई बुगा
0: नबुक थोकी नमोम दत्ते पाल मनुम दखन करेंगे नमोम वो तो मिनुम शियाओ दना कन भी बनो इमोम ले तब मोम भी रानुम शिद नंचो नंचो ले भी आ रहा है नंचो ले भी आ रहा है कौन दो इक्रो दलो है कौन दो इक्रो न है नमो
2: नहीं न भी बुत सही भी सही थिंग नहीं न वारक पियो नुपी जाओ भी वाकल थिंग भी मपोक तो पोक लो बना ननाई न भी न लंज करे इमो मागी मफम दा ममा वई भी आयाग न यारो साबु ऑन करे ने मपाई बुगो
0: ममा वई भी ना ना करेगी ममा वई भी की वाकन चलम दे
2: मानी
0: मो मनी सुबरा इमो मनी सुबरा ना है
2: पाई मवा कल थेन भी भूंगाक पियो दे मपाई बुगो आई नलान की बकी बिक तो आग पियो मपाई बुबो
0: नोंग दो थक तो पाई नी बा सगला चादी लांग में ओ न कोई न रखते मोम चाव भी बुयाओ बला है रंग पांडी चाने ले रंग पांडी मोने लारो पंतो ने मोम यही रंग पुरे ले रंग पुरे ये इमोन नंबर लुक्सी ने इबाबु करी हुई सिग्नल

नंगे थमोइले कोलुंदा नाइतुम साथबी लेरांग उइजगे थाजुको रोमानसु साखी उइशनु नंगे नुंग सिवपु लेखा ताहलोई नंगबु पुंसिगे थादोलोई।

ये आकाशवाणी इम्फाल का शांघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाइकोम सिंह खेंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सबको बहुधा यात्रा यानी कांगलेन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वास्तव से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीत जतिन ललित का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा से सुजाता त्रिवेदी और कमाल खान की आवाजों में। गीतकार है महबूब और संगीत ए आर रहमान का।

फिल्म लकी से लता मंगेशकर और अदनान सामी का गाया गीत, गीतकार थे समीर और संगीत अदनान सामी का। साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब प्रस्तुत है फिल्म अरमान से शंकर महादेवन और अलका याग्निक का गाया गीत, गीतकार जावेद अख्तर और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म हम दिल दे चुके सनम से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत की आवाज़ों में, गीतकार है महबूब और संगीत इस्माइल दरबार का।

साथियों, इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर है लोरेम्बम टूरिस्ट। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गीतमाला की थौरम ताबिरे ताबिरे बसे आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई जनरल दिगनी हौजे पुंखम असिदा ताबिरे बसिंग की दमकता पुजरकली अरिबा मणिपुरी फिल्म से मदी मतम से की कुडो खुदोल की हाँ बता ताबिरे से मतम की मणिपुर फिल्म से की चुंगथाम कमला की नाइतुम खोंजल दा खुरजम फुलेंद्र ने सैरिंग बमदी अरिबम श्याम सरमना सैरांग भी सही

आकाशवाणी इम्फाल के मेगाहर्स चामागोम दस मंगा दस लोक चरीबा एफ एम संगाई चैनल दिगनी अदम ने थारम ताबिरी बसे हाउजिक ताबिरी बसिंग की दमक तंग पूतन लाग चरी मणिपुरी फिल्म से की खुदोल थारम से की खुदोल के हम बता ताबिर से तेलंगा ममई फिल्म से की दिने समय दियो चन चन अनि के पुन बखोंजल दा चाउसन ना सेरिंग बा मदी ओके नमक चमना सेरंग बिसे से खुदोल दमजरी ताबिसी

0: के कई,
1: के कई,
0: मे मई,
1: मे मई,
0: नंग खरा खांगा मनी,
1: खांग,
0: असिंग असी दी बानी यंग फजर बारे है, अदो नंग शुवारा मनी, अदो रदी नंग असी के दिलो इसलची, हयंग मतुंग तमुंग पारा सी को,
1: होय

युवराजन थवाई साक ममा तुन शीघ्र गिहाई बसी करीगुम शिरो खीद रहे युवराज जी थवाई है वाई ममा तुन सिंह ते ये नहीं

0: शिक्षण भी करेबा नापी मांगन बंगम्बा मसल सुने या और बस साथी दी संगी मको किए पने काउबीरगनु लोमी सिंगी मरु साथी
1: हौकीब इंग्लिसिंग अनि कुलुमदोइगी जुलाईगी तांग अमा थांगजनुमितकी लाइबक थिब थौदोक अमद लैखिद्रबा कोंगपाल खाइदिम लैकाइदगी वाइखोम निलकमल बोइचा हायरगसु खंगनबा मियामन नोंगपोक योइरेनबा हायन मिंगथोन पीख्रबा महाकि निंगसिंग मिटममा माइकुम हांगदोकपगी थौरम लागलिब जुलाईगी तांग कुनमंगा इंगेनगी त्रामाथुइनी पानब थांगजनुमितकी अयुकी पुंगमापन मखाइताबदा कोंगपाल खाइदिम लैकाइद पांगथोकचेरगनी नुमित असिदा मियामन सरुक याबिरनब पाउजेनजरी पाउजेनजरी बस वाइखोम इबोयाइमा अपोकपा अमदि वाइखोम तोंदोन अपोकपी कोंगपाल खाइदेम लेकै
2: हायिनु विदां पुंतुर कमिनिनिपु कुंगंगी थोरमदा तहनचकनि माइबम तोंबगी खोनु विसै अरुबदना लाइव फोनिन प्रोग्राम हलो कुंगंगदा थमजरी फौना नौरिङै तंखकता लोकोटकदव थोरंग सिंग एकोगि स्टुडियोदा एक्सपर्ट विन लिंगसन बिगदबा KBK Thobal ki farm manager Dr. Vaikom Jiten Singh thorum la tokpi kada bi khoirakpam Minakshi Puthopna Nonthombam Roma ngasinu midang pung tari ka minini phu manga kangla channel ta tan jakani seyol sida khonjin bamati thorum la tokpi kada bi Priscilla Thongam Tabiri Basi Akash Bani Phalgi ka hongjinu midang ki pung tari makai tare Manipuri ta pauta birasi
3: आकाशवाणी इम्फाल नांगोम किरण पाउ पाजरी अहानब मरुआब पाउ मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा नहायरी मियाम पुन सौखत मीनदुना हेन फब लेंगा सासंग महाउ पीनब मा की सरकार होनरी नुमित मापनी चुम सथरप कांग सिंबगी थौरम ngasi पूर्ण जात्रा कांगलेन पांगथोकतुन लोइसिले थौनाउजुम बसंत कुमार एमएलए नहायरी मणिपुर की इरांग असिदगी राजनीति की खुदोंगचाब लौनन बहोनरीबो सिंगदगी सेक्शन सी मणिपुर की डीजीपी मुकेश सिंह नंगासी टेक्नोपल जिला दसतुना ngaksel की फिवम हन्ने यंगचिनख्रे अमसुंग नेट क्वेश्चन पेपर लिखी मतांग नंगासी सुसरांग नब थोकपदगी संसद की सभा अनिमक की मिफम सथब यादतुना निंथौकाब नुमित फाउ यै थोकख्रे मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा नहायरी मियाम की सौखत थौरंग सिंह पाइकतुना पुन्न सौखत मीनेदुना हेन फब लेंगा सासंग महाउ पीनन बहोनरी इम्फाल वेस्ट के सलामदा नौन साबा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दाइट की बिल्डिंग अमसुंग नौन साबा इमा मार्केट अम संगाबगी थौरमदा मुख्यमंत्री नहाई ngasi संगारीबा दाइट की बिल्डिंग अमदि इमा मार्केट असिना लमदम अदुगी मियामदा मगुल लैब शिक्षा पीनबा मियामगी पुनसी महिंग अमसुंग सेल थुंगी फिम हेन फगत अनबदा चाउन मतेंग ओइरगानी प्लानिंग डिपार्टमेंट ना इमा मार्केट अदु मपुंग फान साब लोइदुना मियामद सिनब गंबगी दमक्सु महागना डिपार्टमेंट अदु थागत फोंगदोखी मुख्यमंत्री नहाई
4: डिस्ट्रिक्ट मियाम सिंह नंगा क्वाइटली सावर डिस्ट्रिक्ट सी इम्फाल वेस्ट सी केंद्र तराग हुंदुरगा पुनबा अदु मुख्य लडी इम्फाल वेस्ट सी ना डाइट सेंटर अमक खांगदोसे प्लानिंग डिपार्टमेंट ना मते पंगबीदना पकरो अहुं खरे हे चंगना इमा मार्केट अदु सर्विस सु सेलमी लोंदा चोबा kada mama porkeni na bolitagari ba diet college siga ima marke siga ima ate desu gona itu mali lapsan kendra gi ki salam gi jaga surrounding se ikui ikui dala chai kar gi manunda tokto pa ta mama porka
3: थौरमद द लमसांग केंद्र की एमएलए सोरोखाइबम राजन इम्फाल वेस्ट की डेप्यूटी कमिश्नर मयंग नमम राजकुमार यौना मकोक थोंबा ऑफिसल कया सुसर किया की नमित मापनी चुम सथरप भगवान जगन्नाथ मयामबुंग बलभद्र मसुंग मसनी बेमा सुभद्रगी कांग सिंहब की थौरम ngasi पूर्ण जात्रा कांगलेन फांगथोकतुना लोइसिले इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लैबा श्री श्री गोविंद जी की मंदिर की मंदिर दगी भगवान जगन्नाथ मयामबुंग बलभद्र मसुंग मसन इबेमा सुभद्रा लेंथोरकतुना रथ मथक तोंगदुना

0: पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मखल मैथिल के थरुम के असंद उक्त ने तहन जरी वर्सी आकाशवाणी फाल की FM संगाई चैनल दिगिनी हौजे निमिदांगी पुंग मापल तारे मणिपुरी द पाओ ताविरसी।
3: आकाशवाणी इम्फाल नांगोम किरण पाउ पाजरी नमित मापन निश्चुम सतरकपा भगवान जगन्नाथ मयामबुंग बलभद्र मसुंग मसन इबे म सुभद्रा गे कांग सिंगबो गे थोरम ngasi पूर्ण जात्रा कांगलेन फांगथोक थुना लोइसिले। इम्फाल गे पैलेस कंपाउंड लाइब सिरी सिरी गोविंद जी की मंदिर दगी भगवान जगन्नाथ मयामबुंग बलभद्र मसुंग मसन इबे म सुभद्रा लेंग थोरक थुना रथ मथक तोंग दुना पूर्ण जात्रा गे थोरम पांगथोकी। थोरम रे द मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान मसुंग मणिपुर गे निंग थोले शम सना जाबु याउना भक्त कयान सर्प याकी। सगोल मंदिर लाइब श्री श्री विजय गोविंद संगाई प्रोद लाइब इस्कोन की मनी मंदिर गोपीनाथ राधा माधव अमदि तंपा की मफम क्या रसुंगसी कांग सिंह की थौरम सिंह महुसा की चनबी मसुंग लाइनिंग लाइसोल की थौरम गलोने न पांगथुक नकी। नुमिदांगी मतमदा खुबाक इसई शक्तुना लाई की थौरम सिंह सु पांगथुक नरी। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान मेघालय की मुख्यमंत्री कॉर्नर के शंगमागंगसी इम्फाल लाइब मुख्यमंत्री की बंगलो द उनखरे उनबदुदा एनपीपी की स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर लोरहो एस फोजे मसुंग दोलसी की एमएलए मंगासु याउकी। तुंगद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया थागलक पुवारोलम दहाई पुन सौखत मिनब लमदम अमा ओहिनना बहनबदा श्री संगमाग मतेंग पांगनदुना मखाताना थबक तौमिनगनी हाइबगी अचेत पथाजबलै। सेनापति की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR लिसंगनी कुंतर की ऑब्जर्वर ओरिबा मोहनलाल मीनानंगसी सेनापति दसतुना जिला दुदा SIR गमरी लेनन फाइकली बथवक थरम सिंह यंगसिनक्रे। सेनापति की मिनी सेक्रेटरीत जिला सिग डेप्यूटी कमिश्नर धरुण कुमार जाउना मरी लेनब ऑफिसियल सिंगा मिफम ममसु पांगथोकी। धन मंजूरी यूनिवर्सिटी अमसुंग मेरंदा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी की मरक्त ngasi यानसी अम सही तौनक्रे। यानसी अदु बोटनिकल रिसर्च एनवायरमेंटल स्टडीज अमसुंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसिंग लमदा पुन थबक तौमिननबा सही तौनकी बनी। इम्फाल इस जिला की मनुंग चन लैब बामोन कंपुद लंबी मनाक्त हौब उजाऊ अम टेक लगा लंबी थिंगजिन खिबदगी मणिपुर फायर सर्विस की कांगबु अम संगसिंदुना फैजे लंब उजाऊ अदु कखतुना लंबी अदु हांगदोक्रे हरी। थौद असी पुंग तरह मिनट निफूरम चतपद्वाई थोकीबनी हैरी। मणिपुर के तोहान तोहान वहमसी नों सूखी राज्य की एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट साइंस डायरेक्टोरेट थादोरक चेरोल हाई तमेंगलोंग जिला मिलीमीटर हूं तरह की मतलब नों सूखी नोनेद मिलीमीटर कुन उखलद मिलीमीटर कुनीपान इम्फाल वेस्ट मिलीमीटर कुन मरी इम्फाल ईस्त मिलीमीटर कुलहद सूरचानपुर मिलीमीटर कुनमाथो की मतलब नों सूखी मरगसीद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर नथोप चेरोलम हाई हयेंग मथंग नुमित हुमनीदसु मणिपुर की मफम अयामद नोंग चुरब याई मफम खरददी अखाक अराव यौना नोंग चुगनी हरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुंग वा मन की बात की साम कुंथ्रा तरुक सुब एपिसोड लाखलेब नुमाइजिंग नुमित के अयुग पुंग तरह माथोद आकाशवाणी की थोंग संदोकनी। थौरम असी AIR न्यूज DD न्यूज PMO मसुंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की यूट्यूब चैनल सिंगदसु लाइव स्ट्रीमिंग तौदुना संदोकनी। थौरम असी LRS सोरचानपुरदसु संदोकनी मसिगी मणिपुरी वाहन तोक प्रधानमंत्री नवांगांग बेक लोइबगा आकाशवाणी इम्फाल न संदोकनी। मसी नुमिलासिगी नुमिदांग पुंग निपानदसु अमुक हन संदोकनी डायरेक्ट लोन सिंगदना मथंगी निमित्त संदोकनी। नीट क्वेश्चन पेपर लीक महिरोइसिंग खोंजंगी मतांग दंगासी सरांगनब थोकपदगी संसद के सभा अनिमकी मिफम चथब यादुना निंथोकाव नुमित फाव यैथोकरे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजू नहाई संसद के नोंगजु मिफम हेक हौब नुमितगी ngasi फाव सरकारना नीट क्वेश्चन पेपर लीक वाथोकी मतांगद खननब सेम सादुनु लैरी। अदुमोइनमक कांग्रेसना अकंगनब वाफम खर थमदुना खोंजंग जंगसिनखिबदगी वाथोक असिगी मतांगद खनब ngamdri वाथो असिना संसद के सदस्य पुनः की पुनिंग दा चक मानव नु

लेरांग लेकल शून्य सात लिबा लेकोल मगुंबनी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल लेपले इतने ताबियो मयाम की दमकनी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल होजिक पुंपा मसीदा पूर्ण लक्षरी तोंगान तोंगान बा सेक्सक पसिंग देगी गीत गीत खुदोल गहन बदा तामिनसी लता मंगेशकर नसकपा गीतमा

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हर सिंगार का प्यारा अंदाज लेकर आज स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूं मैं रोहिणी। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुंचती है इस प्यारे से ख्याल के साथ कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। चांद से इस अंदाज में गुफ्तगू कई बार गीतों के अंदाज में भी की गई है। जी हाँ, ये पहला गीत हमारे प्रोग्राम का जो आप सुनेंगे, आनंद बख्शी साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज में लिखा है। दोस्तों, अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत है, रफी साहब की प्यारी आवाज। और आपको बता दूं, संगीत का जादू है आदि पवन जी का। हर श्रृंगार का आगाज इस प्यारे से गीत के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ रहूंगी मैं रोहिणी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार। श्रोताओं, हमारी आंखें कभी कभी वो ख्याल भी सजा लेती हैं जिनसे हम महक उठते हैं। फिर बात चाहे रात के टोले में सजे उस चांद की ही क्यों ना हो, वो कहते हैं ना, बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद, जाने किसकी गली से निकला है झेपा झेपा सा आ रहा है चांद। किशोर जी की आवाज से सजाई अगला गीत आप तक पहुंचेगा। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को बोल दिए हैं और आरडी पवन साहब का बेहद प्यारा दिलकश संगीत का अंदाज। आइए सुने ये गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार। कई बार होता है कि दिल को ठेस पहुंचाने वाले अल्फाज बड़ा गहरा एहसास देकर जाते हैं और कई बार गहरी यादें भी दे जाते हैं। शायद जिंदगी का अनुभव दिल को कुछ यूं ही रंगता है। दिल को पहले जैसा मासूम नहीं रहने देता, हाँ लेकिन पत्थर भी नहीं होता, मोम भी नहीं रहने देता। दिल की बीबीसी आनंद बख्शी साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज में इस अगले गीत में सुनाई है, या ये कहूँ कि लिखी है, और ये जो अगला गीत है वो है जूली फिल्म से। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज। इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन जी ने।

और मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत आज के हर श्रृंगार को यहीं समेटने की। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल और ये प्यारा गीत, ये प्यारा अंदाज लता जी और किशोर जी की आवाज में आप तक पहुंच रहा है। इस गीत को अल्फाज दिए हैं गुलशन बाबरा जी ने और संगीत से सजाया है आदि पावन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज।

0: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई,
0: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और...
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री

0: किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks.

0: फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एक्सटेंड देयर लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 300 पॉइंट्स। Nifty settles at below 23,800. Most Asian stock market indices end in the negative territory. And Cabinet approves the Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in India.
0: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख। सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की सुस्ती आई। निफ्टी 23,800 के स्तर से नीचे पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 विशिष्ट केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना को स्वीकृति दी।
2: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज शुरुआती नुकसान की भरपाई की और 0.43% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 332 अंक नीचे आकर 76,060 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 102 अंक लुढ़ककर 23,767 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% नुकसान के साथ बंद हुआ। इससे पहले वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कारोबार की नकारात्मक शुरुआत देखी गई। बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण सत्र के पहले हिस्से में दोनों प्रमुख सूचकांक दबाव में रहे। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो निचले स्तरों पर खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के निचले स्तर से काफी रिकवरी की।
2: Benchmark domestic equity indices paired their initial losses and ended 0.43% down today. Sensex dropped 332 points to end at 76,060, while Nifty slipped 102 points to close at 23,767. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index lost 0.1% and the small-cap 100 index fell by 0.3%. Earlier, the markets opened on a negative note amid heightened global uncertainty. Both the stock market indices traded under pressure during the first half of the session amid broad-based sell-off. However, as the day progressed, the Sensex Nifty recovered sharply from the day's low, supported by buying at lower levels and drop in crude oil prices.
0: सेंसेक्स में 30 में से 20 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों को देखा जाए तो एटर्नल में 2.3% से ज्यादा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.1% और बजाज फाइनेंस में 2.1% की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ HCL टेक में लगभग 2.1% की बढ़त हुई। ITC में 0.8% की तेजी आई और एक्सिस बैंक में 0.6% की बढ़ोतरी हुई।
2: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, auto dropped 1%, telecommunications slipped 0.9% and power fell nearly 0.7%. In contrast, focused IT advanced 1.3%. IT as well as PSU banks rose over 0.6% and insurance gained more than 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,124 companies advanced, 2,053 companies declined and 208 companies remain unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में लगभग स्थिर रहा और 96.56 के स्तर पर बंद हुआ। AKB कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: और इस सप्ताह अगर कारोबार पर हम नजर डालें तो लगभग हर दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ और पिछला सप्ताह थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये सप्ताह निवेशकों की दृष्टि से अगर देखें तो लाल निशान उन्हें ज्यादा देखना पड़ा। कौन कौन से प्रमुख ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिली?
1: एकदम आपने सही कहा निखिल जी। अगर आप 5 दिन के ट्रेडिंग देखें तो करीबन 2% की गिरावट रही और हर दिन हमने गिरावट देखी और उसका प्रधान कारण यही है कि और ये जो गिरावट जो है ये अगर आप देखें पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा साप्ताहिक गिरावट थी
0: जी।
1: और इसका प्रधान कारण ये था कि जो विश्व स्थिति जो है वैश्विक स्थिति उसमें जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और भी गंभीर हो चुकी है। जिस तरह से यूएस और ईरान का जो मसला चल रहा है, वो एक समय तो ये लग रहा था कि ये शायद रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, पर वो और भी वातावरण और भी गंभीर हो जा रहा है, और इसी कारण स्टॉक मार्केट एक तरफ और क्रूड ऑयल प्राइस दूसरी तरफ, दोनों में जो एक टेंशन, डर भी कह सकते हैं, उसी के कारण हम जो पिछले 5 सत्र में जो हमने देखी जो गिरावट, यही उसके प्रधान कारण है। कोई अंतर्देशीय कोई कारण इसमें नहीं है, ये पूरी तरह से एक एक एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर निर्भरशील ये डेवलपमेंट है। हालांकि हमने आज जो मार्केट में देखा
0: जी,
1: उसमें एक एक एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आई, वो ये लगा कि जब मार्केट नीचे आ गई, तब आधे मार्केट में दिन के जो पिछले अंतिम समय में मार्केट इतनी नीचे आ गई कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वापस आ गए और ख़रीदना शुरू किया। उससे जो मार्केट की जो पहले हाफ में जो गिरावट थी, वो उतनी गिरावट से वो बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब यही मुझे दिख रहा है कि अगर मार्केट एक पॉइंट के नीचे आ जाए
0: जी,
1: तो जो इन्वेस्टर की जो एपेटाइट जो है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि ये एक पॉजिटिव रीज़न है, पर ये दर्शाता है कि मार्केट में एक स्टेबल लेवल जो है आज की तारीख में जो मार्केट में जो आया है, वो लगता है कि एक स्टेबल लेवल है। अगर उसके नीचे जाए तो हमें ये शंका होगा कि मार्केट शायद एक और भी एक बेरिश फेज में जा सकती है, पर अगर इसी लेवल में रुका रहे तो अगले समय में, अगले दिनों में अगर इसमें कोई अगर कोई इम्प्रूवमेंट होती है तो शायद आगे की ओर हम देख सकते हैं। पर इस वक्त समय एकदम बहुत ही क्रिटिकल समय है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स बिहेव करती हैं। यूएस मार्केट बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहेगा, किस तरह से यूएस फेड की जो नीति जो है उसमें सब कुछ लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए इस बार
0: जी।
1: सितंबर की जो आएगी उससे पहले भी एक और एक नीति आएगी, उसमें भी शायद कुछ बढ़ जाए। उससे जो डोमेस्टिक मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट का जो और जो मार्केट की जो फ्लो ऑफ मनी है वो शायद और भी कम हो जाए।
2: AKB for the week only FMCG and auto actually had gains. FMCG rose 0.5% and auto by 0.4%, even though auto today dropped by 1%. So we are seeing a trend that is being followed. The US markets have also seen a devaluation in yesterday's proceedings in the market itself. How do you see the coming week? Because the US tariff policy is also something that will influence valuation of sectors and stocks, and the US Iran war is not seeing any abatement. In fact, it has only gone up. Oil prices, even though they fell today marginally, do you see them go up next week? And how do you see next week's market, bearing in mind all these geopolitical factors and the US tariff policy, which is not just 10%, but can also be 25 to 50% across other sectors?
1: Well, I think what you said, the FMCG and the second sector
2: auto,
1: that you use, the auto, there are specific sectoral factors at play. Auto is heavily influenced by what is happening on the use of the ethanol-based fuel. So there is a bit of uncertainty. Sales may have been impacted. So the auto industry stocks are reflecting that uncertainty and nervousness. The FMCG sector has become weak because there is a certain softness seen in the rural demand. The rural economy may not do as well as earlier it was thought to be because of the El Nino effect and the rains being so erratic. So it's likely that the rural economy, its income surplus, so the earnings will be depressed, which will impact the FMCG sector, which are heavily influenced by the rural economy's demand. So both these sectors that you mentioned are reflective of sectoral developments. On the question, far more fundamental question that you raised about how will the stock market will respond to the coming week of developments, I would say that a big factor would be that if there is any breakthrough that one can see in the kind of discussions or talks or any deterioration in the relationship between US and Iran, that will be a very, very important factor. Another factor would be that what are the signals that we get from the Fed on what kind of policy that it will adopt? Will it become more restrictive? Now, if it gets more restrictive, then surely the Indian markets will also be impacted. So one, the West Asian market, the situation. Two, the stance, more clarity on the stance of the US Fed. And three, a counterpoint is that so far Indian companies have done very well in terms of results. Now, if you look at the 260 odd common sample of companies which have declared their results, their sales have grown by over 20%, and even their profit, which is adjusted against extraordinary income the previous year, it is also over 22%. So both profit wise as well as sales wise, they have done well so far. Of course, the laggard companies, the results will come a little later. Those who are doing better, they come out with the results first. But even then, I would say this could be a positive counterbalancing factor to the developments on the stock market for the coming week.
2: We saw that in the fourth quarter. We've seen that in the first quarter regarding the earnings results. Quite interesting that you brought about those metrics for the benefit of our listeners on Akash Vani. Even the margin has actually gone up if we not just take into account net profit and revenue and sales performance. Banking results have also been declared. Non-performing assets are also coming down marginally. But the news that I want to bring to your mind is information technology. They have seen a fall in valuation before they saw a rise in valuation today. To what extent do you see the US dollar index, which is at 101.43, actually influencing short covering in this sector, the IT sector?
1: Well, to a great extent, the IT sector is influenced by what is happening in the technology space, which is the AI, the artificial intelligence space. Most of India's tech companies are battling that demon, if I may use that expression. Yes, the dollar index does play a role, but I think the bigger factor is how AI will impact its margins. One associated point that you raised about the banks and the financial sector, they have done well, but they are not doing well in the stock market. It's a very, very interesting phenomenon that we are witnessing, and that is the reason. The reason is probably that going forward, and the stock market is not a lagging indicator, is a forward-looking indicator. Going forward, the banking sector might see its margins under squeeze. So today's stock market, if you look at the banking sector stocks, they have haven't done well at all compared to the results that they came out with last week. And the reason is that their margins are likely to come under squeeze, and which is why the stock market is not giving them a thumbs up, rather they're giving them a thumbs down.
0: AKB, अगर स्मॉल कैप या मिड कैप की हम बात करते हैं तो आजकल मुनाफा वसूली कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगी है, तो इसके पीछे क्या है? ये रीज़न है कि लोग अब जोखिम लेने की बजाय सेफ ट्रेडिंग करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसमें लार्ज कैप में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ और कारण?
1: नो, आपने एकदम सही फरमाया कि जो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, पहले तो स्मॉल कैप इंडेक्स से जो एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है, और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी पिछले चार महीने में, और पर इस हफ्ते में हमने मिड कैप्स में भी काफ़ी प्रेशर में वो स्टॉक्स रहे, और उसका कारण आपने एकदम ठीक

0: देखा कि लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अपना अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तीसरी कारण जो मैंने अर्जुन जी को भी नहीं मैं बता सका, तीसरा कारण ये है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओस की लाइनअप है और बड़े बड़े आईपीओस आने वाले हैं, और जो स्टॉक मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त क्या करते हैं कि वो जब भी वो स्टॉक मार्केट में मौका देखते हैं वो प्रॉफिट बुक करके वो अपने आप को पोजीशन में लाते हैं, जिस तरह से वो किस तरह से नए आईपीओ में इन्वेस्ट करके उन आईपीओ में से और भी पैसा निकाल सके। तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट ने जो नरमी देखी हमने उसका एक कारण है।
1: आगे बढ़ते हैं। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों ने जोखिम नहीं उठाया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.7% गिरा, जापान का निक्केई 2.7% से ज्यादा टूट गया, ताइवान का ताइएक्स लगभग 2.7% नीचे आ गया, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.6% लुढ़क गया और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1% के नुकसान में रहा। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ में रहा। आर्थिक मोर्चे पर जापान का कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में सालाना आधार पर 1.6% हो गया, जो मई में 1.4% था। यह बढ़ोतरी मार्च के बाद कोर महंगाई दर में पहली तेजी थी। जापान के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार प्रमुख महंगाई दर भी जून में सालाना आधार पर 1.7% थी, जबकि मई में ये 1.5% थी। एकेबी कल अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख था, आज अचानक से नकारात्मक रुख देखने को मिला।
0: हाँ, सही कहा आपने। एक टेक अवे जो है वो है जापान की जो जो प्राइस इंडेक्स की जो डेवलपमेंट, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के लिए भी। हालांकि निकी गिर गया है मार्केट में, पर उसकी जो प्राइस इंडेक्स, वो जापान में दाम बढ़ना एक बहुत बड़ी एक एक घटना है, क्योंकि जापान में इन्फ्लेशन का नामो निशान नहीं है बहुत दिन से। अगर इन्फ्लेशन आता है तो हालांकि आम जनता को क्षति पहुंचती है, टेंशन होता है हम लोगों को, पर जो इन्वेस्टर जो है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर जो है, सर्विसेज सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं, उनको एक प्रॉफिट की एक एक एक एक डायरेक्शन मिलती है, प्रॉफिट अर्निंग की एक इंडिकेशन होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन जो 1.6% की जो इन्फ्लेशन जो बढ़कर 1.4% से आ गई है, ये भी दर्शाता है कि जापान में डिमांड की विजिबिलिटी आई है। और ये मैं समझता हूँ जापान विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थनीति है, उसके लिए ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट में कहूँगा, हालांकि स्टॉक मार्केट में आज इसका ठीक तरह से वेलकम नहीं किया।
2: इन मोर न्यूज, द यूएस हैज इंपोज अ 10% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड 16 अदर कंट्रीज ओवर कंसर्न अबाउट द यूज ऑफ फोर्स्ड लेबर इन सप्लाई चेन्स। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर Jameson Greer said the new tariffs ordered by President Donald Trump target 60 countries under Section 301 of the Trade Act for failing to effectively ban imports made with forced labor. The tariff replaces temporary 10% worldwide levies that expired yesterday after the U.S. Supreme Court struck down Trump's earlier reciprocal tariffs. So what's your take on this? Because now we have an idea of the baseline tariff and what is being imposed as well based on this Section 301 of the Trade Act. What would be the next step? Because there seemed to be a variation across sectors.
0: Well, I think this is a limited positive news for India. Because we still don't know what awaits the Indian economy in terms of the US-India Trade Pact negotiations that are still going on. But it's positive because we earlier slapped with a notice of 12.5%. Now we are being bracketed along with 60 other countries at 10%. In terms of the impact on India's exports, it will be less than what was earlier feared. Please remember that this was possible because the government came out with a DGFT notification that said that India will also levy taxes on imports from countries that use forced labor. Now, India had not done it earlier. Now, this was done to essentially assuage and ensure and convince the US that India is also very, very concerned about forced labor, and that is what is happening right now.
1: और शुद्ध आपको बता दें, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज देश में तीन विशिष्ट केमिकल पार्क बनाने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, जिसे हम भव्य रसायन योजना भी कह सकते हैं, उसको स्वीकृति दे दी है। इस योजना की घोषणा 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना का कार्यकाल फिलहाल 5 साल के लिए रखा गया है। केंद्र सरकार हर पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी, जबकि संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा। एक भी इस योजना का भारत के लिए कितना महत्व होगा, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम काफी चीजें विदेशों से आयात करते हैं।
0: देखिए, हमारी जो जो आत्मनिर्भरता का जो एक प्रोजेक्ट है, उसी का ये मैं एक समझता हूँ कि एक उसका एक ही एक कड़ी है ये। और ये केमिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसके अंदर शायद अंतर्गत होगा
1: जी।
0: और इससे जो हमारी जो आयात के ऊपर निर्भरशीलता जो है उसमें कमी होगी, और वो हमारे लिए, देश के लिए, अर्थनीति के लिए एक सुविधाजनक बात है।
2: In more news, India's foreign exchange reserves rose by $1.08 billion to over $676 billion for the week ended 17th of July. According to the data released by the RBI, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased over $4.5 billion to over $551 billion. The RBI said gold reserves declined by $3.48 billion to over $101 billion. President Draupadi Murmu had said regarding India and Romania, after delegation-level talks with a Romanian counterpart, Nicuso Dan, President Murmu said India and Romania have set a target of doubling bilateral trade over the next 3 years.
3: India-EU free trade agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
2: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices retreated today after surging earlier in the session. Brent crude was trading 3.1% down at $97.58 per barrel in intraday trade. Earlier, Brent crude rose above $100 a barrel for the first time since May amid concerns over global energy supplies stemming from West Asia conflict. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading over 2.6% down at $89.74 per barrel when reports last came in. And now moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.1% up at 1,43,670 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.2% up at 2,22,490 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना मामूली बढ़त के साथ 1,42,909 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.1% ऊपर आकर 2,21,901 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एकेबी, गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कमेंट्स होंगे?
0: देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, थोड़ी बहुत उनमें लोगों की रुचि भी बढ़ जाती है। हालांकि वो रुचि थोड़ी कम हो गई थी पिछले कई दिनों पर, जब स्टॉक मार्केट में जो थोड़ी बहुत हलचल मस्ती है, थोड़ी बहुत बिकवाली होती है, उससे मार्केट में नीचे आता है, दबाव में आता है मार्केट, तब गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड भी ज़्यादा एक वृद्धि होती है, और इसी वही आज की गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में दिख रहा है
1: जी। एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices extend their losing streak. Sensex declines over 300 points. Nifty settles below 23,800. Most Asian stock market indices end in the negative territory. And the cabinet approves a Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in India. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
1: Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रोग्राम आपका पसंदीदा लेकर एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूँ रोहिणी। जी हाँ, प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, सदाबहार गीतों की बहार तो इसमें आप तक पहुँचाऊंगी ही, साथ ही बड़े प्यारे ख्याल भी आपसे साझा करूंगी। कहते हैं जो कभी न भर पाए ऐसा भी एक घाव होता है और उसका नाम लगाव होता है। कहते हैं ना कि दिल की अधूरी बातें भी खूब होती हैं जिनमें यादें पूरी डूबी होती हैं। गुलजार की शायरी सी लगती है ये जिंदगी जहां खामोशियां भी खूब बोलती हैं। जी हां, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सदाबहार गीतों का ये अंदाज आप तक पहुंच रहा है। आज के गीत मेरे मनमीत का आगाज करते हैं इस प्यारी सी आवाज में जो कि लता जी की प्यारी आवाज से सजा गीत है। और आपको बता दूं कि प्रेम पर्वत फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे, जानेसार अख्तर साहब ने इस गीत को अल्फाज दिए हैं और जयदेव साहब का मधुरमयी प्यारा संगीत।

गीत मेरे मनमीत का ये अंदाज आप तक पहुंच रहा है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कहते हैं जिंदगी यूं ही बेकरार है, कभी खुशी तो कभी इंतजार है। ये इंतजार खत्म करते हैं और आप तक अगला गीत पहुंचाते हैं। मौसम फिल्म से ये गीत है लता जी और भूपेंद्र जी की आवाज में। इस गीत को गुलजार साहब ने गुलजार किया है और जी हाँ संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कहते हैं भूली बिसरी यादें जब आती हैं, वक्त ठहर जाता है, जिंदगी मुस्कुराती है। चलिए अगर ऐसा है तो उम्मीद यही करते हैं कि जिंदगी को मुस्कुराने दीजिए। 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल आप सुनते रहिए। इस गीत के साथ फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत। 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत को यहीं समेटती हूँ। शुभरात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी प्रतिनिधि

0: मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यान पूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत अधिकारी सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोरोफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने बयान में बताया है कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। अमरीका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। लगभग सभी अमरीकी आयातों पर लागू यह टैरिफ कल समाप्त हुए इसी तरह के शुल्क की जगह लेंगे। अमेरिका ने कहा है कि इससे उन देशों को निशाना बनाना है जो जबरन श्रम से निपटने में विफल रहे हैं। चीन के हांगझोंग में ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex, approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message on Thursday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency or NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High Level Committee of Experts chaired by Professor

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 14.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात

0: के ख्वाब सुहाने थे, धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे, जिद्दी वहशी अल्हड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग, होठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे। रात की ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। तो भाई जब रात गहराती है तो दिल की आवाजें बहुत साफ सुनाई देने लगती हैं, चांद खामोशी से मुस्कुराता है, तारे अनकही बातें कहते हैं और हवाएं यादों की खुशबू साथ ले आती हैं। एक ऐसी ही खूबसूरत रात में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ। जी हाँ, अगले कुछ लम्हों तक हम और आप रहेंगे साथ प्यार एहसास और दिल को छू लेने वाले गीतों के साथ। चलिए आगाज करते हैं रफी साहब की आवाज में जंगली फिल्म के इस गाने के साथ।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे

शाम गम की सहर नहीं होती, शाम गम की सहर नहीं होती, या हमी को खबर नहीं होती। चांद है कहकशा हैं तारे हैं, चांद है कहकशा हैं तारे हैं, आह यूं बेअसर नहीं होती। दोस्तों इश्क है खता, लेकिन क्या खता दरगुजर नहीं होती। रात आकर गुजर भी जाती है, रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर नहीं होती। तो भाई सहर भी होती है, खबर भी होती है, और इश्क भी हो जाता है। तो चलिए अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म है नया दौर, आशा भोसले और शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कभी कभी दिल जानता है कि उसे ठहर जाना चाहिए।

फिर कभी किसी की एक मुस्कान, एक झलक सारी कोशिशें बेअसर कर देती हैं। हमने भी कई बार अपने जज्बातों को रोकना चाहा, खुद को समझाया कि अरे रुक जाओ, ये बस एक एहसास है। लेकिन हकीकत तो यही है कि जब दिल को और निगाहों को कोई पसंद आ जाए तो फिर ये दिल कहाँ किसी की सुनता है। चांदनी रात हो या फिर तन्हाई हो, वही चेहरा बार बार याद आता है और लगता है जैसे मोहब्बत ने खामोशी से अपनी जगह बना ली है। तो आइए चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही दिलकश नगमा। फिल्म है मेरे सनम, रफी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में।

कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जबानी कह देंगे, जब प्यास जवां हो जाएगी एहसास की मंजिल पाएगी, खामोश रहेंगे और तुम्हें हम अपनी कहानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे।

कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार देखो, दो बार देखो या बार बार देखो, ये मन भरता ही नहीं है। नजर बार बार वहीं ठहर जाती है, जैसे चांद को देखकर हर रात नई सी लगती हो। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, जब किसी को देखने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, बस उसे देखते रहने का मन बस करता ही रहता है बार बार बार बार। तो इस हसीन रात में चलिए दिल के इन्हीं मासूम एहसास को हम और आप सुनते हैं गीत के माध्यम से।

जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशी गंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा में हमारा आपका सफर यहीं तक, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष नाका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश

नीतीश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराध की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों की मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा को अपने जीवन की सबसे परिवर्तनकारी शक्ति बताया। अपने गांव की पहली लड़की के रूप में कॉलेज जाने से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक के अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा समावेशी समाज का सबसे मजबूत आधार है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहिन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीन ट्री से हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है गीत सुहाने। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे। तुम सोच के रखना दोगी जवाब क्या, जब हम सवालात की बरसात करेंगे। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे।

कहते हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत जुबान आंखें होती हैं, कुछ निगाहें बिना एक भी लफ्ज कहे दिल की हर बात पढ़ लेती हैं। चांदनी रात में जब किसी की चंचल आंखें याद आ जाएं तो तारे भी जैसे मुस्कुराने लगते हैं। उन आंखों की मासूम शरारत और अपनापन दिल पर एक ऐसा असर छोड़ जाता है कि फिर हर नज़र में, हर निगाह में बस वही चेहरा दिखाई देने लगता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कहते हैं कि मोहब्बत नसीब वालों को ही मिलती है, जिसके साथ कोई अपना हो उसके लिए हर रात चांदनी बन जाती है और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। दुनिया की सारी दौलत भी उसे एक सच्चे इंसान के आगे छोटी लगने लगती है, जो हर खुशी और हर दुख में, हर खामोशी में आपका हाथ थामे रहता है। शायद इसीलिए तो कहा है कि दुनिया उसी की होती है जिसके दिल में प्यार हो और मोहब्बत समाई हो। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं इसी खूबसूरत एहसास के साथ।

रात की खामोशी में कभी कभी किसी की आंखें याद आ जाती हैं, ऐसी आंखें जिसमें शरारत भी हो, अपनापन भी और एक अनकहा जादू भी। उनकी एक नज़र दिल की धड़कनों को बदल देती है, जैसे चांदनी अचानक और उजली हो गई हो। शायद इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं। जब किसी की आंखों में पूरी दुनिया नजर आने लगे, तो इस हसीन रात, चांद, तारों और दिल के जज्बात को हम समेटते हुए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक दिलकश नगमा।

कुछ रिश्ते धीरे धीरे दिल में जगह बनाते हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि ये दिल अब सिर्फ अपनी धड़कनों का नहीं रहा। चांदनी रात में जब किसी की याद मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाए तो लगता है जैसे जिंदगी ने अपना सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया। मोहब्बत शायद यही है, जब दिल अपनी हर धड़कन किसी एक के नाम और उसके नाम के हवाले कर देता है।

और देखिए गीत सुहाने प्रोग्राम में चलते चलते हम अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं और चलते चलते सुनवाएंगे आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत। फिल्म है फागुन और रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जिंदगी की बात करें, मोहब्बत की बात करें, तो मोहब्बत जिंदगी में कभी दस्तक देकर नहीं आती। बस एक मुलाकात होती है, एक मुस्कान एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है और दिल चुपके से किसी और का हो जाता है। फिर चाहे वो शख्स अपना शहर छोड़ दे या फिर दूर चला जाए, उसकी यादें चांदनी की तरह हर रात साथ रहती हैं। कुछ लोग जिंदगी में बस कुछ पल के लिए आते हैं, लेकिन उन पलों की खुशबू उम्र भर दिल में महकती रहती है। तो चलिए इस महकती रात, चांद और तारों की गवाही में सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

मेरे लिए तू खुद को यूं खुद से जुदा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। जितना भी हो सके तू कर लोगों की भलाई, अपनी तरफ से तू किसी का भी बुरा न कर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। यह कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर जिंदगी में हम किसी के लिए चांद नहीं बन सकते तो किसी की सुरमई रात की चांदनी बन जाइए, क्योंकि रोशनी वही नहीं है जो सबसे ज्यादा चमके, बल्कि वो है जो किसी के अंधेरे को कम कर दे।

0: कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं, दिलों में उतर जाते हैं। ठंडी हवा का झोंका, चांदनी की नरम रोशनी और किसी खास की अपने की याद, बस इतना ही काफी है दिल को मुस्कुराहट से भर देने के लिए। शायद यही मौसम का जादू है जो हर धड़कन में मोहब्बत के रंग भर देता है।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कहते हैं कि मोहब्बत हो जाए तो पूरी कायनात अपने पन से भर जाती है और फिर ये धरती जमीन आसमान पहले से ज्यादा हसीन लगने लगते हैं। चांद थोड़ा और करीब और सितारे जैसे हर दुआ के गवाह बन जाते हैं। इंतजार भी तब शिकायत नहीं रहती बल्कि उस मुलाकात की उम्मीद बन जाती है जहां दो दिल बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ थाम ले। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई साथी है या ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप पूरी दुनिया और उसके साथ पाकर आप दुनिया से बढ़कर मानते हैं तो ये खूबसूरत नगमा जो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ये उसी प्यार के नाम।

राज सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात जितनी खामोश होती है दिल की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देती है। कुछ मोहब्बतें साथ नहीं छोड़ती चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं। चांद हर रात आसमान में लौट आता है लेकिन कुछ लोग सिर्फ यादों में ही मिलते हैं। तब दिल खामोशी से अपनी बात कहता है और तन्हाई का हाल सुनाता है कुछ इस तरह।

दिले फासले दर फासले, रास्ते दर रास्ते, हादसे दर हादसे, चलते चलते रुक गया हूँ मैं भी इस उम्मीद पे, लोग जो बिछड़े हुए हैं मुझसे शायद आ मिले। तो इसी के साथ रात सुरमई का ये सफ़र यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अनुमति सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। भारत और इजराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोराफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। हॉकी में भारतीय जूनियर

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

सच्चा प्यार किसी ऐलान का मोहताज नहीं होता, वह तो दिल की हर धड़कन में चुपचाप अपना घर बना लेता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है हम राही. किसी अपने का हाल पूछना केवल एक सवाल नहीं बल्कि दिल से निभाई जाने वाली सबसे प्यारी परवाह है.

कभी एक नजर ही दिल की धड़कनों का नया सुर दे देती है। यही तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंदाज है।

और इस समय कह रहे हैं कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, छोड़कर जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज में से सजाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। तो मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, नमस्कार। और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्रवाई में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। भारत के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम भार वर्ग में सफलतापूर्वक उठाकर 130.9 अंक हासिल किए, पोडियम पर जगह बनाई। नाइजीरिया के रिलवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक हासिल किया। मौजूदा चैंपियन भारत के सुधीर 114.1 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। ये वादा रहा फिल्म के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म भाई भाई से गीता दत्त की आवाज में। गीतकार राजेंद्र कृष्णन और संगीतकार मदन मोहन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर और इलारून की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है अरुणिमा और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मौसम से भूपेंद्र और लता मंगेशकर की आवाज में. संगीतकार मदन मोहन, गीतकार गुलजार.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आपने गीत सुना याराना से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार अंजान, संगीतकार राजेश रोशन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म सितमगढ़ से आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी परमंड।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म हम दोनों से आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरटी बर्मन।

और मैं छोड़ के जा रही हूँ आपको प्रोग्राम अरुणिमा के आखिरी गीत के साथ। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। गीत है फिल्म जख्मी दिल से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। तो मैं लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंगटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 18 जुलाई को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिक सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। एफआईएच युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी के बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से मात दी। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की बालिकाओं को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम का भार उठाकर सफलतापूर्वक ये पोडियम पे स्थान बनाया। नाइजीरिया के रिलुवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है 5:11 और 7 सेकेंड। समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सुर संगम के इस भजन के साथ।

जिस तरह मधुबन बिना किसी भेदभाव की अपनी खुशबू बांटता है, उसी तरह हमारा जीवन भी प्रेम, दया और सद्भाव की सुगंध से महकना चाहिए।

हर कठिन समय के बाद खुशियां की नई सुबह आती है, इसलिए विश्वास बनाए रखें, मेहनत करते रहें और मुस्कुराते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।